0: विशेष तो था ही नहीं यार।
1: शहर में भीड़ सब मान से अकेला, टेंशन गर्मी ठेलम ठेला, हर कोई जिंदगी से धकेला, सानो बात माँ ठूलो समेला। ये